0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मीडियम

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: मानस कांड तहत श्री रामचरित्र मानस का लड़ीवार पाठ। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। तो हुण तुहानू असी परिचय के तहत साढ़े बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा दे दिए। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी 7:02 ते प्रोग्राम होएगा सोनी सवेर। 8:40 ते समा होएगा पंजाबी फिल्म म्यूजिक ते प्रोग्राम महक पंजाब दी दा। 9:02 ते तुसी फिल्म म्यूजिक सुनोगे जिदे विच अज थीम रहेगा प्रकृति। तुहाडी चिट्ठी मिली, इस प्रोग्राम दा समा रहेगा 9:40। ते 10:00 तुसी साडा स्टेट हुकअप प्रोग्राम सुन सकते हो, रुख लगाओ वातावरण बचाओ। इहदी पेशकश कीती गई है गुरविंदर सिंह होरां वल्लों। हैलो फरमाइश, ये प्रोग्राम तुसी 10:30 सुन सकते हो और धमक जलंधर पैंदी 11:05 ते। बाद दोपहर 12:05 ते भैणा दा अपना प्रोग्राम वसदे वेड़े सुनोगे। फौजी वीरां लई ये प्रोग्राम रोज़ाना दी तरह 1:15 और रंगली धरती लोक गीतां दा ये प्रोग्राम तुसी सुन सकते हो 2:30। अज इहदे विच BS नारंग लोक गीत सुनाएंगे। बाद दोपहर साड़ी दूजी सभा की शुरुआत दे विच तुसी साड़ा प्रोग्राम सुनोगे खेड संसार 4:02 ते। देहाती प्रोग्राम दा समा शाम 6:30 जिदे विच कम दियां गल्लां दे नाल नाल अज तुसी सौनी फसलां च नदीने दी रोकथाम इहदे बाबत डॉक्टर अमनदीप सिंह होरां दे नाल कीती गलबात सुनोगे और पंजाबी नाटक सराला इहदा पहला भाग भी सुनाया जाएगा। साहित्य सुधा ये प्रोग्राम 7:40 ते। राज्य दे विच संस्कृत साहित्य विच वनस्पति पूजन इहदे बाबत रूबी जैन होरां दे विचार सुने जाणगे। 7:50 ते प्रोग्राम होएगा लम्हे और जिंदगी हसीन है, ये प्रोग्राम तुसी रात 8:00 सुन सकते हो। रात 8:15 सुर सरिता दे विच तुसी अज प्रदुमन होरां दे गीत सुनोगे। रात 10:00 संगीत दा अखिल भारती कार्यक्रम होएगा जिहदे विच पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय दा वोकल जिहड़ा ओह सुनाया जाएगा। ये सीगे साढ़े अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साढ़े सारे प्रोग्राम हुण वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक इस वेले सवेर दे 6:55 हो रहे ने। ते आओ हुण सुनदे आ समाचार संस्कृत दे विच।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं

नमस्कार जी, सोनी सवेर लै के मैं गौरव हाजर हाँ एक बार फिर एक नवा दिन एक नवी सवेर इस उम्मीदा दे नाल कि ये दिन तुहाडे सारयां लई बहुत वधिया गुजरे। आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम सोनी सवेर ये तुहाडे सारयां लई सवेरे सवेरे इसे करके आंदा है कि जिहड़ा नवा दिन चढ़िया ना ये दिन ना सिर्फ तुहाडे लई तुहाडे आले दुआले लई तुहाडे घर लई तुहाडे मोहल्ले लई तुहाडे पूरे देश लई यानी कि साडे पूरे भारत लई पूरी दुनिया लई एक वधिया संदेश लैके आए। और जदों गल संदेश दी करदे आ ना तां जरूरी नहीं कि जिहड़ा संदेश है वह हमेशा किसी इंसान तो सानू बाहरों ही मिले। संदेश असी प्रकृति तो भी लै सकते हैं, संदेश असी अपने आले दुआले तो भी लै सकते हैं। सूरज रोज़ संदेश देता है कि अंथक मेहनत के बावजूद भी रोशनी जिहड़ी है वह घटनी नहीं चाहिए। चाहे तुहाडे विच जिन्नी मर्जी अग होवे लेकिन हमेशा उहदा फायदा जिहड़ा है दूसरियां नूं पहुँचना चाहिए। चंद्रमा यह संदेश लैके आंदा है कि रात वेले जदों हनेरा हो जाता है तां वी तुहाडे कोल रोशनी का स्रोत है, ठंडक है। इस तरह ही जिहड़े सारे लोग ने उन्हां नूं अपने विच सारे जिहड़े गुण है वह विद्यमान करने चाहिए ने। गुणा की खाण तुसीं तां ही बन सकते हो जे तुहाडा मन स्थिर है, और मन स्थिर उदों ही हुंदा है जदों तुहाडे मन दे विच पैसे नहीं है, लालच नहीं है, किसी तरह का कोई अहंकार नहीं है, होमा नहीं है। और तुसीं देखोगे कि जदों ये सारिया चीज़ां तुहाडे विच आ जांदियां ना तां तुहाडा जिहड़ा जीवन है वह वधिया हो जाता है। और जीवन वधिया जे करना है तां उहदे लई ऑल इंडिया रेडियो का यह प्रोग्राम सुनना जरूरी है, क्योंकि इहदे विच ना सिर्फ असी इनफॉर्मेशन दें तुहाडे लई गीत संगीत भी लैके आने। जी हाँ, गीत संगीत का जिहड़ा मनोरंजन है ना वह भी तुहाडे लई करते हैं।

जी बिल्कुल, जिहड़ा किनारा है वो हमेशा दूर हुंदा है, लेकिन तुहानू उहदे तक पहुँचना हुंदा है। और उहदे तक पहुँचण लई तुहानू बहुत सारियां औकड़ां भी आउंदियां हैं और बहुत सारे साथियों का साथ भी मिलता है। और जे गल करिए ना साथ दी, तां अज है 4 जुलाई और अज दा दिन मनाया जांदा है अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। हर साल जुलाई दे पहले शनिवार नूं ये दिन मनाया जाता है और ये दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है। ये दिन का उद्देश्य जिहड़ा वो ये है कि लोगों नूं सहकारिता दी बते बारे, कोऑपरेटिव्स दे बारे जानकारी दित्ती जावे और समाज दे विच आर्थिक, समाजिक ते सांस्कृतिक योगदान जिहड़ा है वो वधाया जावे। इस साल 2026 दे विच यूएन और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा तय की गई ऑफिशियल जिहड़ी इहदी ना थीम भी है। और इस साल दी थीम पता की है? कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी एक शांतिपूर्ण दुनिया लई सहकारी समितियां। ये थीम इस गल ते जोर देंदी है कि सहकारी समितियां दी आपसी जुड़ाव, लोकतांत्रिक भागीदारी, आर्थिक समन्वेश ते समाजिक जिहड़ा न्याय है ना उहदा वाधा जिहड़ा है वो समाज दी शांति और स्थिरता नूं लियांदा कम करता है। और जे इहदे इतिहास की मैं गल करा ना, तां इहदी जिहड़ी शुरुआत ICA यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जिहनूं असीं कहिंदे आ, 1923 दे विच इहनूं मनाउणा शुरू कीता गया सी। और बाद विच 1995 च जदों संयुक्त राष्ट्र ने

आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

जी श्रोतियो, और गल तुसी धंधा दी तां सुण ही लई है, और गल ए वी है कि जिन्ने खुश रहोगे उन्ने हसते रहोगे और उन्ने ही चंगे रहोगे। पर चंगे रहने लई सानू होर भी बहुत कुछ करना पैंदा है।

0: ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਘੜੀ ਦੀ ਸੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ। 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਔਰ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे

0: कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब

0: 130 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को

0: पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेत

नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने दोस्त गौरव दे नाल। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी जलंधर ते और प्रोग्राम शुरू करन जा रहे हैं जिहदा नाम है फिल्म म्यूजिक। अज दा ये फिल्म म्यूजिक प्रोग्राम जिहड़ा है वो थीम बेस्ड है। थीम यानी किसी विषय दे नाल जुड़िया होया। और अज दा जिहड़ा साडा विषय है ना वो विषय है प्रकृति, यानी कि कुदरत, पेड़ पौधे, हवा, पानी, ये सब कुछ कुदरत का हिस्सा है, उस प्रकृति का हिस्सा है और असी भी तो प्रकृति के नाल ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि अज असी मिल के दुनिया की सैर ते निकलन वाले हैं, जिथे ना तुहानू ये सीमेंट के जंगल मिलेंगे, ना गड्डियां का शोर मिलेगा, बस ठंडिया हवावां, वहिंदा होया पानी, खिलते हुए फुल, लहराते हुए पेड़। हाँ, तो शुरू करिए। प्रकृति जदों मुस्कुराती है ना तो उदों जिहड़ा दिल है ना वह झूम उठता है। और साड़ी हिंदी फिल्मों के जिहड़े गीतकार है अक्सर इनू अपने शब्दों के विच परोंदे ने। और जे गल करिए सफ़र की, तो सफ़र की जिहड़ी शुरुआत है ना वह ठंडी तो मस्त हवा दे नाल होनी चाहिए है। तो इस मस्त हवा नू तुहाडे तक लैके आ रहे ने किशोर कुमार ते नाल उन्हां दे ने आशा जी। फिल्म है सीता और गीता और संगीतबद्ध किया इस गीत नू आर डी बर्मन ने और लिखिया आनंद बख्शी होरां ने। वो हवा दे नाल नाल चलन की गल करते ने, की कह रहे ने आओ सुणदे हां।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: लो जी, मौसम भी सुहावना हो गया है। प्रकृति दे नाल जुड़दे आ जदों असीं गल करदे आ ना मौसम दी, तां बारिशां दा मौसम होवे और किते ये जिहड़ी बारिश है किसी वादी दे विच किसी पहाड़ ते खुले आसमान दे थल्ले होवे ना, फिर तां जिहड़ा नज़ारा है ना वो ही आ जांदा है। बारिश और सुनहरी सवेर और उच्चे उच्चे पहाड़ बदलां नूं चूमदे होए, प्रकृति दा जिहड़ा यह रूप है ना ये सानू ये सिखाता है कि सानू हमेशा उच्चा ही सोचना चाहिए और खुल के जीवन नू जीना चाहिए। तो फिर अगला गीत तुहानू सुना दें, जिस गीत नू लिया गया फिल्म रोज़ा दे विच्चो और रूहानी और उच्ची आवाज़ दे मालक SP बाला सुब्रमणियम और चित्रा जिन्होंने गीत गाया है। और इस गीत नू संगीतबद्ध पता किन्हां ने कीता है? AR रहमान होरा ने। तो फिर सुनिए ये गीत।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: बड़ी देर बाद मिली है, पर देर आए दुरुस्त आई वाली गल है।
1: अच्छा
0: महेश गर्ग, सुषमा ते जशन गर्ग, मंडी हरजी राम मलोट तो नहीं, 10 जून की गल कर रहे ने ये
1: अच्छा जी
0: जी। करीब करीब 1 महीना हो चला है।
1: जी
0: 10 जून नूं सवेरे कहिंदे वातावरण दे प्रदूषण, खास करके पानी दे प्रदूषण बारे वार्तालाप चंगी लगी। शादी प्रोग्राम च खाने दी व्यर्थ वरतों ते बेलोड़ तों कपड़े वगैरह खरीदण बारे चर्चा चंगी लगी, पर लोकां दे कहिंदे कन्नां दे जू नहीं सरकदी। 10 जून दा तुहाडी फरमाइश ते 11 जून नूं रंगली धरती च लोग ही चंगे लगे। साडी इक बेनती है कि तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम च खता नूं वी शामिल करिया करो, सानूं चिट्ठियां दी आदत कहिंदे बणी हुई है।
1: गल
0: जी
1: ये है अपने पूनम जी
0: जी
1: के सब तो पहला तुसी दस्या भी ये चिट्ठी बड़ी अटक के पहुंची है, 10 जून दी लिखी हुई है ना।
0: जी
1: हुण देखो अज दा जमाना है, इस तरह दा जमाना है कि तुसी एक चिट्ठी, एक मैसेज या कुछ भी लिख दे हो, चाहे तुसी सोशल मीडिया दे किसी अकाउंट दे जरिए लिख दे हो, चाहे ईमेल दे जरिए लिख दे हो, ज्यों ही तुसी एंटर बटन दबाउंदे हो उस वेले बंदा भावें 7 समुंदरों पार, सारी दुनिया के परले कोने ते किसी होर मुल्क विच बैठा होवे,
0: जी
1: उहदे कोल 1 सकिंट तो भी घट

0: टाइम कर लिए। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: हेलो, सत श्री अकाल जी। मैं
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: कुलवंत सिंह, पिंड पोजो के जिला फिरोजपुर तो बोलते सर।
0: कुलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच।
1: धन्यवाद जी, ता फिरोजपुर फोन राही आए जी।
0: और फिरोजपुर दे हाल चाल की ने?
1: हाल चाल गर्मी है जी, वैसे तो माड़ी मोटी हवा चलती है पर गर्मी है, मीह नहीं पै रहा।
0: अच्छा जी, ये वैसे येलो अलर्ट जारी कर दिता है तो बस हुण ध्यान रखियो कितें हुण मीह इन्ना ना पै जावे तो फिर तुसीं कहो तरपालां उड गई हैं।
1: ठीक है, नहीं अपना कोई ऐसा जा सिस्टम है नहीं उधर वाला।
0: अच्छा जी ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी, हाँ जी।
0: चलो ये दसो फिर गीत केड़ा सुना दिए?
1: गीत है जी अनुराग फिल्म का सर जी, ते तेरे नैनो के मैं दीप जलाऊंगा।
0: जी ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया गीत सुनना चाहते हैं, अनुराग
1: हाँ जी,
0: फिल्म
1: हाँ
0: का।
1: जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: 1972 च ये फिल्म आई सी, और इहनू संगीतबद्ध किने कीता है, मतलब इहदा म्यूजिक किने दिता है, पता है इहदे बारे कुछ?
1: नहीं सर, इतना नहीं पता जी अपन नूं।
0: चलो दस देना, एस डी
1: ठीक है,
0: बर्मन होरा ने
1: ठीक
0: इहदा
1: है, ठीक
0: संगीत दिता है, आर डी बर्मन दे पिता जी एस डी बर्मन, और आनंद बख्शी ने इहनू लिखिया सी।
1: ठीक है, धन्यवाद
0: ते लो जी फिर एक गीत सुनान लगा, तुसी
1: जी,
0: सानू
1: धन्यवाद।
0: कॉल कीती इहदे लई बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक

0: बंद किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स, अति DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो, नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी लैके तुहाडे सारिआं दी अपनी दीपाली हाजिर है, मेरे वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार, अदाब ते सत श्री अकाल।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: गाम टाणी लाल खान, जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान ये भी पहुँच गए ने जी। और ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक, बलवीर सिंह ये भी हाजिर ने। अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान ज़िला संगरूर तो अपने साथी मैंबर दे नाल पहुँचे ने, मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा। जलालाबाद वैस तो हाजिर ने सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। मलोट कैंप तो सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल, लखविंदर संधु ये भी पहुंचे ने जी। और पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुलजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर ते परविंदर कौर भी हाजिर ने। अगले सुनेहे नाल अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक भी पहुंचे ने। गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल ते बेबी हिनाशा। लो जी ये तुसी अलग मैसेज भी भेजिया, एक पहले भी मैसेज, दो दो वारी एक प्रोग्राम दे विच मैसेज ना भेजो। इस तरह प्रोग्राम की खूबसूरती जिहड़ी है वह नहीं रहिंदी, क्योंकि यह तुहाडा भी प्रोग्राम है, तुहानू इन्हां चीज़ां दा जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी रामा रोड पिंड हठूर तो भुपिंदर सिंह पटवारी, गुरजीत कौर, और मजनू का टीला तो कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर उमंग, आकांक्षा गुड़िया, माही मलिक ते इशिता अरोड़ा भी पहुंचे ने। न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास अंगुराना, सत्या देवी, पोते वान्या ते पोतरे अरमान अविताज कनेडा तो, और काका दयाविक अंगुराना ते सारा ही अंगुराना परिवार पहुंच गया है। खनौरी मंडी पुराने स्टेट बैंक वाली गली तो पहुंचे ने जी बिंदु बेदी, रिंकू कैंथ, बलवीर सिंह, अरनो कामरेड ते हरभजन सिंह। लो जी पूरे पते दे नाल पहुंच गए ने। ते दतरेंगी पाटा पारा छत्तीसगढ़ तो हाजिर ने हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि ते नोखे लाल वर्मा। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, सिमरजोत ते फतेहजोत सप्पल भी पहुंचे ने। और प्यार भरी सत श्री अकाल लुधियाने वाले दे रहे ने रम्मी हैबोवाल, अपने सारे ही परिवार के नाल पहुंचे ने हैबोवाल कलां हलका उत्तरी जिला लुधियाना पंजाब तो। और अगले सुनेहे नाल हाजिर गांव जाखोद राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा। पिंड चंद बाजा फरीदकोट तो अंग्रेज सिंह गेजा, गुरमीत कौर, जगप्रीत सिंह, मनप्रीत कौर, करमजीत सिंह, चरणजीत कौर, पोती नवकीरत कौर, गुरसीरत कौर, पोता गुरप्रताप सिंह, सारा ही पूर्वा परिवार पहुंच गया जी आकाशवाणी जलंधर। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी कला नौर तो नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन ते मयंक शर्मा। अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू ते रजनी। और खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कलोनी सनावत तो मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। सहेली रेडियो श्रोता संघ वालों आज़ाद रोड सनावत तो बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा भी खत्री, सादिया भी खत्री, नवासी जिक्रा, मोहम्मद सडक खत्री ये भी पहुँच गए ने। और अगले सुनेहे दे नाल हाजिर ने जी बाघा पुराणा वाले भी पिछे नहीं हटते, यह भी समय नाल पहुँच जाते हैं। सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर, पोतरा तेग फतेह सिंह, पोतरी जसगुन रखरा, बहुत बहुत शुक्रिया बाघा पुराणा वालों का और तुहाडी सारयां दी रली मिली पसंद ते। गीत पेश करन जा रही हैं प्रोग्राम च केदीप ते जगमोहन कौर दियां आवाज़ां।
1: हेलो

ने निश्चल निश्चल ऋषि, संजू ऋषि, सौरव, कृतिका, अमरजीत, नीलम, राहुल, ऋषिका ते लाडो ऋषि। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तुसी हमेशा ही साडे प्रोग्राम पसंद करते हो ते अपने सुनेहे भी समय नाल भेजते हो। विजय तंवर ते ममता मुंडी खरड़ तो हाजिर ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा पहुंचे ने, और वासदेव छाबड़ा, अंश, दिव्यांशी, चिराग, साजन ते लालरू मंडी तो ये पहुंचे ने जी। और अगला सुनेहा मनीला फिलीपीन तो मदन मोहन लहर, सरबजीत, संजू, नीतिका, अजय, एंजल, लाडला पोता अर्नव लहर ये भी हाजिर ने। और मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा, दिव्या ये पहुंचे ने पिंड चंदमारी तो। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचया शाहजी नगर, देगलूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र तो। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या ते सविता भाकरे होरी पहुंचे ने जी। और पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम, मोहन लाल, राजेश्वर सोनू, अरविंद कुमार ते लाडी धालीवाल समाणा वाले। अगला सुनेहा काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र तो मास्टर विठल, सुरेश, सुरोशे, सुषमा, परिधि, मायरा, सुरोशे ये भी पहुँच गए ने जी। बीड शहर महाराष्ट्र तो भी महाराष्ट्र वाले भी आकाशवाणी जलंधर च बहुत प्यार बरसाते ने। इस तरह ही प्यार बरसाते रहो। नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा, नाम राम निवास अग्रवाल, धनंजय टबूल, पीबी कुलथे। गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा तो राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन ते परिवार दे सारे मैंबर भी हाजिर ने। अर्शदीप, सुरजीत सिंह अमरकोट तो। और अगला सुनेहा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो ये पहुंच गए ने। किला रहमतगढ़, मलेरकोटला तो मोहम्मद इकबाल कुक्कू, मोहम्मद जमील छांगा, निसार अख्तर और जग्गा राम। और अगला सुनेहा प्रोग्राम दे विच भेजिया जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश तो मास्टर अशोक कुमार, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना ते सुदामा नगर खंडवा तो लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगता। थोड़े सारे दी रली मिली पसंद ते सतिंदर सरताज दी आवाज़ एरकी।

0: ਕੱਟ ਜਾਣ ਲੈ ਬਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से

0: श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz।

0: जी प्रीति, देखो पेड़ पौद्यां दे सिर्फ नाम सुन के ही सानू किन्नी ताजगी महसूस हुंदी है। सोचो कि जदों असी इन्हां नूं अपने आस पास लगा लईए, रोप लईए, तां असी हमेशा ही ताजगी दे विच रहांगे।
1: बिल्कुल जी, कहा भी जाता है कि धरती का श्रृंगार हरियाली अते रुखां दा प्यार।
0: बिल्कुल। और देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिहड़ा है, विभाग जिहड़ा है, इस हफ्ते दे विच उन्हां वल्लों बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारियां प्रजातियां दे पेड़ पौधे जिहड़े है लगाए जांदे ने,
1: जी
0: और नाल दे नाल लोकां दे विच वी वंडे जांदे ने।
1: जी सो जी, अगले गीत वाल असी वधदे हां,
0: जी
1: जिसकी फरमाइश सानू आई हुई है।
0: बिल्कुल। अगले गीत दी फरमाइश है जी, कहिंदे जी गिप्पी गरेवाल ते गुरलेज अख्तर दी आवाज़ 'च सानू गीत सुणा दिओ। इह कहना है जी श्री गंगा नगर वालिआं दा,
1: जी
0: जो कि इह इहनां दा पूरा परिवार है, बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला तों मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता।
1: जी इसे गीत की फरमाइश आई है जी मलोट तो, जगतार गिल, गैवी गिल ते अमनदीप गिल होना ने फरमाइश भेजी। डब वाली हरियाणा तो इस गीत में सुनना चाहते ने जेके बकौलिया, श्रीमती सुनीता बकौलिया, संजय अनिल ते मीनू बकौलिया। ते इसे गीत की फरमाइश पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो मुस्कान कौर, परमजीत कौर, सुखप्रीत कौर, मलकीत कौर, किरणदीप कौर, रीना ते रणदीप। आओ जी इन्होंने सारे की रली मिली फरमाइश से सुनते हैं एक गीत।

0: जी अगला गीत, अगली फरमाइश जिहड़ी तुहाडे तक पहुँच रही है जी, कमल हीर होना दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहुंदे ने अजीत नगर मलोट तो, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर ते उन्हां दी लाडली पोतरी रौनकदीप कौर। मैं खुद अपनी फरमाइश भेजने ने आर के बजाज बिल्ला ते मनु बजाज, करणवीर हाउस पूछो कैंचियां तो प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन कुलदीप, एकम दमन ते अभिजोत। पिंड मौला तो ये फरमाइश आई है जी, भेजन वाले ने पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मौला, दर्शन बराड़, मलकीत कुड़ियाना ते मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल। ते इसे गीत में सुनना चाहते ने जिला लुधियाना तो पुरानी मंडी मुलापुर तो रिजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन
1: जी। और जैन परिवार के नाल नाल चकला बाजार समाना तो बड़ी कलरफुल जी फरमाइश सानू भेजी है पप्पू राजा खुश दिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल ते पूरा खुश दिल परिवार। सब्जी मंडी समाना तो शशिपाल कटारिया, मनीष भवी, नेहा, रेनू सरोज ते गीता।
0: आओ जी इन्हें सारे दी रली मिली फरमाइश ते सुनते हाँ एक गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: जी, सिलसिला चल रहा है झांझरां दे बोर, जिस विच मैं गुरप्रीत ते मेरे नाल ज्योति अपने स्रोतियां दी फरमाइश दे गीत उन्हां तक सुनवा रहे हैं।
4: बिल्कुल, और अगली फरमाइश जिहड़ी आई है कहिंदे जी सानू सुरिंदर कौर दी आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो आए ने जी जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार। अलीगढ़ डबवाली तो बसंत सिंह चन्न, राजकुमार सुनीता ते कुलदीप गांधी। पिंड बुरज तो राम सिंह तग्गड़, पिंदर कौर तग्गड़ ते पूरा परिवार।
3: जी, इसे गीत में सुनना चाहते ने मलोट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग ते विनोद गर्ग। मंडी अहमदगढ़ तो फरमाइश भेज रहे ने बिट्टू राजा, नरिंदर शर्मा, सविता शर्मा ते पुष्कर शर्मा। मुल्लापुर मंडी तो फरमाइश आई है जी कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन ते दीपक जैन और दी। पिंड थाना जिला बठिंडा तो इसे गीत में सुनना चाहते ने हरजिंदर चिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। आओ जी, इन्हों सारे की रली मिली फरमाइश से सुनते हैं एक गीत।

0: जी, सिलसिला चल रहा है चांचना दी पूर, उस दे विच अगली फरमाइश।
1: अगली फरमाइश कहिंदे जी, सानू मास्टर सलीम दा गाया गीत सुना दिओ। पिंड अमीर शाह वाला तहसील जीरा तो मुख्तियार सिंह ते उना दे दोस्त मित्र कहिंदे ने, और महसगेट नाभा तो सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत, पिंड गोबिंदगढ़ माझी वाला श्री

0: करनपुर राजस्थान तो राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जिनू मनु, आदित्य भूमि राखी, अमृत पड़वाल, शिव सेठी करनपुरी ते स्माइल टुटेजा।
1: जी फाजिलका तो अपनी फरमाइश भेज रहे ने अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते सारी वर्मा परिवार दे मैंबर ते इसे गीत नूं सुनना चाहुंदे ने। बागा पुराना तो फरमाइश भेज रहे ने गगनदीप कौर, गुरप्रीत कौर, परमजीत कौर, पाल सिंह ते परमजीत सिंह। पिंड कैरो तो फरमाइश आई है जी भेजण वाले ने गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद ते उन्हां दा पोतरा गुरशब्द। फाजिलका तो ही फरमाइश भेज रहे ने विनोद काटपाल, परवीन काटपाल, हनी काटपाल, दीक्षा काटपाल, जन्नत काटपाल, दीपा काटपाल ते बलकार खोखर। आओ जी इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां एक एक।

0: जी सिलसिला चल रहा है झांझरां दे बोर,
1: जी
0: और श्रोते सुन रहे ने जी अपने मनपसंद गीत। और अगली फरमाइश जड़ी सानू आई है श्री फतेहगढ़ साहब पिंड अतापुर तों, रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह ते सहजप्रीत कौर, साधुल शहर तों ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान।
1: जी सरदूल सिकंदर होना दी आवाज़ दे विच गीत सुनना चाहुंदे ने जी सारे। कुछ कत मेरे कोल भी ने, शामिल कर रहे हैं कोटली कला पंजाब तो यादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। संगरूर तो फरमाइश भेज रहे ने अश्विनी गर्ग, विनोद गर्ग, प्रियंका गर्ग ते उन्हां दे नाल बहुत सारे साथी। हाजीपुर तो फरमाइश आ रही है जी, भेजन वाले ने सोनू, बाली, लाली, जीवन, बिट्टू, विजय कुमार ते प्यारे लाल जी। पवनाल हाजीपुर तो विजय कौंडल ते पूजा कौंडल ने भी सानू फरमाइश भेजी है। तो ये है जी पिंड होलावाली तो फरमाइश भेज रहे ने रूहानी नारंग, मानवी नारंग, सो

जी चलते चलते असी आ गए हाँ आखिरी फरमाइश वाल भी। और आखिरी फरमाइश जड़ी है वो आई है रंजना दे गाए गीत लई सेखो कलोनी समाणा तू नवदीप गोयल मनप्रीत गोयल ते पूरा गोयल परिवार मंडी गोलू वाला राजस्थान तो ब्रिज।

0: लाल चौहान, नीरज कुमार चौहान होना दी। आए ने जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान ते जिशान खान। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया ते बेबी आरजू जजौरिया
1: जी। पिंड चादरा जिला जीरा फिरोजपुर तो फरमाइश भेज रहे ने जगदीर सिंह, जगजीत सिंह, टहल सिंह, प्रेम भूषण गुप्ता, कुलदीप सिंह, अजीत सिंह, जीत सिंह, बूटा सिंह, हरनेक सिंह, गुरसेवक सिंह, गुरचैन सिंह, सुखचैन सिंह ते लिखारी सभा दे सारे मैंबर साहबान। सहारनपुर तो आशु नारंग, सुरेश नारंग, शालू ते सचिन ते इसे गीत में सुनना चाहते ने नहर किनारे टाणी फतेहवाली तो राम सिंह रूपाल, खुशदीप कौर रूपाल ते सारा रूपाल परिवार। ते आओ जी इन्हें सारे की रली मिली फरमाइश ते एक गीत।
2: मैं सौ सौ

0: जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानूं जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय की। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी V.S. नारंग दे गाए लोक गीत सुणोगे। साढ़े 4 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 का समा रहेगा देहाती प्रोग्राम का। अज इस विच साउनी फसलां च नदीना की रोकथाम इस बारे गलबात करनगे डॉक्टर अमनदीप सिंह। काम दियां गल्लां होणगियां। पंजाबी नाटक सरालां इसका भाग पहला सुनोगे। इस तो इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत भी सुनाया जाएगा। सत्त 40 मिनट ते तुसी सुनोगे साहित्य सुधा। संस्कृत साहित्य विच वनस्पति पूजन इस बारे गल होएगी रूबी जैन जी। रात 8 तुसी पल्स ते रेडियो रिपोर्ट सुनोगे। सवा 8 का समा रहेगा सुर सरिता का। साढ़े दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या, 9 न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 साहित्य भारती ते रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस विच कलाकार होंगे पंडित अर्नब चट्टोपाध्याय। अज इन्हों का गायन सुनोगे ख्याल। DTH की पंजाबी प्रसारण सेवा के जरिए दिने 3 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सौगात प्रोग्राम का लुत्फ उठाओगे। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों के क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बलोतरा में तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, जिनमें रेलवे, सड़कें, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली की तरसील और तवानाई वगैरह भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पचपेदरा के मकाम पर मुल्क का पहला ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया, जो मुल्क के तवानाई और पेट्रोकेमिकल के शोबे में एक बड़ी कामयाबी है। जनाब मोदी ने बलोतरा में खिताब करते हुए कहा कि
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का संगे बुनियाद भी रखा, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चूरू सादुलपुर और चूरू रत्नागढ़ की रेल लाइन को दोहरा करने से मुतालिक प्रोजेक्ट और जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 2 और नेशनल हाईवे 125A को 4 लेन वाले प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये इमारत 23,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है और इसमें सालाना 20 लाख मुसाफिरों की आमदोरफ्त की गुंजाइश है। इस इमारत में मुसाफिरों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, ताकि वो बिला रुकावट और आसानी से सफर कर सकें। इस नई टर्मिनल इमारत से खित्ते में सियाहत, तजारत और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने जोधपुर में उड़ान स्कीम का भी आगाज किया, जिसे नए सिरे से तश्कील दिया गया है। इस स्कीम के लिए अगले 10 साल के दौरान 28,840 करोड़ रुपए सर्व किए जाने का निशाना रखा गया है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को तकवीत देने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सनांत के मकाम पर CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है। ये मरकज मुल्क की तकनीकी साजो सामान तैयार करने के सफर में एक अहम संगे मील साबित होगा। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शोरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहे की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतअद्दिद सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाज़त देगा कि वो इन अफराद के इकतसादी असासे को मुंजमद करे, असलहे की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें जब्त करे। UAPA की तरमीम से भारत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके ज़रिए मरकजी हुकूमत और तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। इस तरमीम को 14 अगस्त 2019 में नोटिफाई किया गया था। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आज इंतखाबी फहरिस्त के

0: खसूसी नजरसानी अमल के तहत इंदिराजी फॉर्म दाखिल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर, डिस्ट्रिक्ट इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर और बूथ सतह के अफसर ने दिल्ली में जारी इंतखाबी फहरिस्त की SIR के हिस्से के तौर पर उपराष्ट्रपति भवन में इंदिराजी अमल में मदद की।
1: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: सरकार ने नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने टेलीग्राम से कहा है कि वो OTT पर कंटेंट और फिल्मों की नकल के खिलाफ फौरी इकदामात करे। ज़राए के मुताबिक मजीद बताया ज़राए ने कि टेलीग्राम से 15 दिन के अंदर इकदामात की रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। इस इकदाम का मकसद भारत की क्रिएटर मईशत, फिल्म इंडस्ट्री, OTT प्लेटफॉर्म, नशर करने वालों, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तहफ़ फराहम करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी कुमार ने एतमाद जाहिर किया है कि अहमदाबाद और मुंबई को मिलाने वाला पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर 2029 तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अहमदाबाद में नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने गुजरात में रेलवे के जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया था। जनाब अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और गुजरात सेक्शन में 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। रेलवे के वजीर ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क का काम मरहलावार तरीके पर किया जा रहा है। सूरत को बिलमोरा से जोड़ने वाला पहला सेक्शन अगले साल शुरू किए जाने का प्रोग्राम है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कम्प्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: भारत और इसराइल के दरमियान बाहमी सरमायाकारी से मुतालिक समझौता आज से नाफिज हो गया है, जिस पर नई दिल्ली में पिछले साल सितंबर के महीने में दस्तखत किए गए थे। वजारत खजाना ने कहा है कि यह समझौता बाहमी इकतसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की सिमत में नहायत अहम कदम की हैसियत रखता है। वजारत ने यह भी कहा है कि इस बाहमी समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी की सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद है। मौसमियात के महकमे ने बताया है कि अगले 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात पाए जाते हैं। इसी दौरान आज कौमी राजधानी में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को हबस और गर्मी से कुछ राहत मिली। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे T20 बैन अवी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच, जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था, बारिश के सबब इसे तर्क करना पड़ा था। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत के पहले पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स और मरबूत ग्रीन फील्ड को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का इफ्तिताह भी किया। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के कानून UAPA के तहत पाकिस्तान में मुकीम 23 अफराद को दहशतगर्द करार दिया है। मरकज ने बड़े पैमाने पर नकल की रिपोर्टों पर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। उससे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। भारत और इसराइल के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी समझौता आज से अमल में आ गया है। IMD ने कहा है कि अगले 4 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजीद आगे बढ़ जाएगा। और मर्दों की क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 बैन अवी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरों, खबरों तो बाद फिर हाजिर हो गए हैं तो मनोरंजन लई कुछ होर फिल्मी नगमे लैके।

प्रोग्राम च अगला गीत जब वोई मैट फिल्म चो लिया गया, आवाज़ मोहित चौहान दी। इस गीत नु लिखिया इरशाद कामिल ने ते संगीत निर्देशक ने प्रीतम।

फौजी वीरो प्रोग्राम दा अगला गीत कहो ना प्यार है फिल्म चो लिया गया। आवाज़ लक्की अली दी, गीतकार ने विजय ते संगीतकार ने राजेश रोशन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय

0: सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलिमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़।

रंगली धरती प्रोग्राम दे अखीर च आओ सुनदे हां बी एस नारंग दी आवाज च नाल सजन दे रहिए।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास प्रकट किया है कि अहमदाबाद दे मुंबई नू जोड़न वाला समुचा हाई स्पीड रेल कोरिडोर 2029 दे आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद नू उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि दित्ती है। भारत अते इजराइल विचकार दुवला निवेश समझौता बी आई ए अज तो लागू हो जाएगा।

जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा उन्हां दा खाता है जी। तो उस तो अगला खत साढ़े को आया हुआ है जी, पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो भोला सवान, डॉक्टर अमनजीत सिंह, गुरतेश्वर, रितमनजोत, अभिजोत, गुणराज दोस्त भी इन्होंने लिखे है जी, आर पी सिंह निहाल, बलतेज सिंह, मलकीत सिंह, दीपा तिंगड़ा, तो इन्होंने कहा कोई भी संगीत सुना देना। तो दोस्तों खत तुसी लिखते हैं प्यार नाल, तो जे तुसी सोहना सोहना लिखते हैं तो थोड़ा जिहा वखवा रख के भी लिखो और क्लीयर अक्षर लिखोगे ना तो असी तुहाडा नाम जिहड़ा सोहने तरीके दे नाल पढ़ सकते हैं। अगला खत साडे कोल आ जी चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदेल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल ते पूरा खुशदिल परिवार, तो इन्होंने भी यही कहा जी सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। तो अगला खत साडे कोल जी पटेल नगर मलोट पंजाब तो डॉक्टर रमेश कुमार जुजेरिया, गीता राणी जुजेरिया, गगनदीप जुजेरिया, बेबी आरजू जुजेरिया, इन्होंने भी एनी सोंग लिखा जी कोई भी गीत सानू सुना दो। तो लो जी, तो अगली खत साडे कोल जिहड़ा आया जी वह गाँव रामवर करनाल तो है जी, ज्ञान भूषण शर्मा, सोचनाथ कालिया उन्हां दा, इन्होंने कहा जी सानू तुसी रणजीत बाबा का गीत सुना दो डॉलर। तो चलो असं भी सुन के देखते हैं जी डॉलर गीत किवें दा है, तो तुहाडी पसंद का गीत तुहानू जरूर सुना रहे हैं। लो जी आ रहा तुहाडी पसंद का गीत

हाँ जी दोस्तों, तो ये गीत सी गुरदास मान जी की आवाज़ के वधिया गीत सीगा ये। तो खतां दा सिलसिला साडा चल रहा जी, गाँव कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलहोत्रा, सुनीता शर्मा, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद, कोई भी गीत कहते सुना दो जी। गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जैतक विरक ते मिका विरक। तो एक खत साढ़े कल जी करमवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचिया तो प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दुपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत। तो कहते जी खत शामिल करने बहुत बहुत शुक्रिया, तो सानू कोई भी गीत सुना दो। तो अगला खत साढ़े कोला हैगा जी मलोट तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमनदीप गिल, खाने दी टाप तो शमशेर कौलदर, ते बुरज सिद्धवा मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिद्धू, ते जगतार जग्गा, ते धौला किंगरा तो इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है जी। अगला खत साढ़े को आया है, ये हैगा जी गिदड़वाहा तो जी मनजीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल, बेबी हनीशा, बेबी कैरवी, इन्होंने भी सुरिंदर सिंधा के गीत की फरमाइश की है। आओ दोस्तों इन्हों पसंद गीत के नाल अगला गीत सुना, सुरिंदर सिंधा की आवाज़।

रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार उन्हों का हैगा जी खत। इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है जय जी बी दे गीत की कहते कोई सानू गीत सुना देना। एक खत साढ़े को आया जी सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग तो गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भाविक डिंगरा तो ये कहते जी दिल तो बहुत बहुत शुक्रिया नाल इन्होंने इमोज बना के भेजे हुए जी खत लिखने बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगला खत साढ़े को आया जी जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया तो पप्पी भाटिया उन्हों का। तो अगला खत साढ़े को हैगा जी हाजी मुल्लापुर दाखा मंडी तो रजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन गौतम जैन बिट्टू जैन मट्टू जैन रसगुल्ला जैन घोटना जैन मैंगो जैन रबड़ी जैन नगीना जैन संजीव जैन तो इन्होंने हरबंस हरभजन मान की गीत की फरमाइश की थी जिहड़ा असीं सुनाया है जी थोड़ी देर पहला। तो मॉडल टाउन करनाल तो भी खत आया साढ़े को जी सुधीर नूतन नरेंद्र तनेजा संदीप गुगलानी तो जग्गी दुआ उन्हों का जी। तो इन्होंने भी किसी भी गीत की फरमाइश की है। अगला गीत साढ़े को खत हैगा जी की लिखा है खुश सहारनपुर तो जी खाता है आशा नरंग सुरेश नरंग सोनाली पाथिक ते कृषिव कृषिव इन्हों का खाता जी साढ़े को। खाता का सिलसिला तो साढ़े को बहुत ज़्यादा जो हैगा कि असी जिन्ने मर्जी चाहिए खत पढ़ सकते हैं क्योंकि साढ़े स्रोतिया का प्यार ही साढ़े नाल इन्ना है। लेकिन यह है भी चलो जाते जाते गाना भी सुनाना जरूरी होंगे मनोरंजन तो जिंदगी का हिस्सा है ठीक है ना। तो तुहानू गीत सुनांदे हां असी हरजीत हरमन की आवाज़।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है हुण तक दियां मुख खबरां।

नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़ै पाग गुरमुख हर लहना। ये फरमान मनुख मातर वास्ते है, ते उसनू नाम जपण दी हिदायत करदा है। पर प्रभु दे नाम दा जाप वड़े पागा नाल उस दी किरपा सदका ही हुंदा है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। ए सुखदायक नाम इस दा वासा प्रभु दे प्यारे जना दे हिरदे विच हुंदा है। ताही ता प्रभु प्यारे उस दे नाम दा ही वणज करदे हन, उस दे नाम दा ही उचारण, उस दे नाम दा ही उत्तम व्यापार करदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, मैं बनजारन राम की, तेरा नाम वखर वापार जी। सरवण कर

0: मैं बनजारन राम की, तेरा नाम वखर वापार जी। इस शब्द का गायन किया सी भाई निरंजन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवै। उदम करे पलके पर भाती, स्नान करे अमृतसर नावै। जो गुरु का सिख है, जो गुरु का निकटवर्ती है, वो प्रभु दा नाम त्योंदा है। वो उस नाम रूपी अमृत दा इश्नान करदा है, ते उसनू सदीवी सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। पर प्रभु दे नाम विच कोई विरले जन ही रते जांदे ने। सुनदे आ हरदेव सिंह कलसी होरां पासों वार्ता, नाम रते सदा सुख होई।
1: इस बचन दी रचना तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी दी पावन रचना तो होई। गुरु जी ने अपने सुंदर शब्दां राहीं परमेश्वर दे नाम दी व्याख्या नूं ही उजागर कीता है। परमेश्वर हमेशा सच चित आनंद अविनाशी जन्म मरण तो रहत हर वस्तु विच फैलिया होया जुगां जुगांतरां तों एक रस रहण वाला सारे संसार दी उत्पत्ति करन वाला है। जो परमेश्वर दे प्यारे उस परमेश्वर दा नाम सदा अपने स्वासां राहीं उसनू हमेशा याद करदे हन, उन्हां नू ही परमात्मा दी अलौकिकता दा पता चलदा है। पर संसार विच अजिहे विरले ही गुरमुख जन हन जो परमेश्वर दा नाम हिरदे राहीं जपण करके इस मरातवे दी प्राप्ति करदे हन। गुरु अर्जन देव जी पंडित ज्ञानी अते हर एक जिज्ञासू नू बहुत ही प्यार सहित इस ज्ञान दी सोझी बख्शिश करदे हन। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। जदों गुरु नानक देव जी दी सिद्धां नाल गोष्ट होई तां उन्हां ने पातशाह नू कई तरह दे सवाल कीते, तां गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तर विच परमेश्वर दे गुणां दे संबंध विच बहुत ही सुंदर शब्दां राहीं सोझी पाई कि परमात्मा जो ब्रह्म है वो सदा सलामत है, अंदर बाहर हर जगह ते रमिया होया है। इस अविनाशी पुरख दे खेल नू

तज अभिमान अर्चिंत बिरानी, साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तंते रोग खए। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दविंदर सिंह सोढ़ी ते उन्होंने रागी जत्थे ने। प्रभु का नाम अत कल्याणकारी है, सुखां दी सौगात देण वाला है। जदों कोई भी प्राणी प्रभु का नाम जपदा है तां उसदे जन्मां जन्मांतरां दे कीते होए पापां दा नास हो जांदा है। गफलत दी नींद विच सुत्ता होया मन जागृत अवस्था विच आ जांदा है। फिर सदा उस प्रभु का नाम लैण वाले वडभागे प्राणी का मुख लोक ते परलोक विच उजला हुंदा है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटह कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै। सरवण करदे हां बीबी जसमीत कौर होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जीजै। इस शब्द गायन कीता सी बीबी जसमीत कौर होरा।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को

0: संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

0: ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल अति सिक्योर नेटवर्क पे करो है कि खान दी चैंपियनशिप सी आरबीआई के अंदर है जानकार बनो सचेत रहो
1: हुन सुन दे एक समूह गान एक भारत श्रेष्ठ भारत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सनती महारा का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम विज्ञानक पड़ाव पर पहुंच रही लागू किया गया है। सरकार ने कीमत स्थिरता लिए प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ा के 2125 रुपए फी क्विंटल की थी। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने मोहाली के पिंड सनेटा विखे कायम देहाती सेहत सिखलाई केंद्र का उद्घाटन किया। पंजाब पुलिस ने साइबर अपराध खिलाफ मुहिम की होर तेज, एक साल में 729 गिरफ्तारियां। भारत ने इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्तार नाल। सनती महारा ने किया है कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम रातों रात लागू नहीं किया गया, सगों एक चंगी तरह योजनाबद्ध पड़ावार अते विज्ञानक तौर ते संचालित प्रक्रिया राही लागू किया गया है। नवी दिल्ली विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदियां इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साबका चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने किया कि इथेनॉल मिश्रण प्रोग्राम नूं 2018 विच ढांचागत चर्चा अते हिस्सेदारां दे सलाह मशवरे लई जनतक खेतर विच रख्या गया सी। उन्हें भी कहा कि इस पहलकदमी विज्ञानक सबूतां ऑटोमोबाइल निर्मातावां एसोसीएशन ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च ऑफ इंडिया अते सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स वालों कीतियां व्यापक परखां की हमायत प्राप्त है। इस मौके बोलदा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के चेयरमैन अते कार्यकारी उपमुखी विक्रम गुलाटी ने कहा कि इथेनॉल एक साफ सुथरा इंधन है जो चंगी संचालन कुशलता अते उच्च गति की पेशकश करता है। उन्हें कहा कि एक अजिहे युग विच जदों लोग जलवायु तब्दीली दियां चुनौतियां दा सामना कर रहे ने, यह बूटियां तो प्राप्त एक जीरो कार्बन ईंधन है। सरकार ने कीमत स्थिरता लई प्याज की खरीद कीमत विच 13% का वाधा किया है। खपतकार मामले खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय

मुताबिक खरीद कीमत हुण 1875 रुपए फी क्विंटल तो वध के 2125 रुपए फी क्विंटल हो गई है। सोधी हुई खरीद प्रति कीमत आज तो लागू है। मंत्रालय मुताबिक इस नाल प्याज किसानों नूं बेहतर लाभ मिलेगा अते खरीद यत्ना च भी मदद मिलेगी। सरकार दे कीमत स्थिरता बफर लई प्याज की खरीद भारतीय राष्ट्रीय खेतीबाड़ी सहकारी मार्केटिंग संघ लिमिटेड नाफेड अते भारतीय राष्ट्रीय सहकारी खपतकार संघ लिमिटेड NCCF राही जारी है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग के साल 2025-26 लई दूजे अगाऊ अनुमान मुताबिक प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन तो वध होण दा अनुमान है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा भंडार काफी है अते इस समय प्याज की कोई थोड़ नहीं है। प्याज का भारत भर विच औसत तो तन परचून मुल 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज की बरामद आम वांगे ते इस साल जून के महीने दौरान करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन प्याज की बरामद हुई है। पंजाब के सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली के कम्यूनिटी मेडिसन विभाग अधीन मोहाली के पिंड सनेटा विखे कायम देहाती सेहत सिखलाई केंद्र RSTC का उद्घाटन किया। उन्होंने मेडिकल इंटरना लिए बनाए जाने वाले होस्टल अते चार दीवारी की उसारी का नींह पत्थर भी रख्या। इस मौके संबोधन करदिया डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार देहाती खेतरां विच सेहत सहूलतां नूं होर मजबूत बनाउण लई लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स मोहाली वालों कायम यह आधुनिक केंद्र देहाती लोगों नूं म्यारी सेहत सेवावां मुहैया कराउण दे नाल नाल मेडिकल विद्यार्थियों नूं भाईचारा आधारित सिखलाई भी प्रदान करेगा। डॉक्टर बलबीर सिंह ने आले दुआले के पिंडां दे लोकां नूं इस केंद्र विखे उपलब्ध माहिर डॉक्टरां दीआं सेवावां दा वध तों वध लाभ उठाउण दी अपील कीती। उन्हां कहा कि चंगी सेहत लई समें सिर जांच अते जागरूकता बेहद जरूरी है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब दे पुलिस दे डायरेक्टर जनरल DGP गौरव यादव ने कहा है कि राज साइबर क्राइम डिवीजन ने पिछले 4 सालों विच साइबर अपराध विरुद्ध लड़ाई अते बेगुनाह नागरिकां दी राखी विच बहुत हद तक कामयाबी हासिल कीती है। पंजाब पुलिस वल्लों सूबे भर विच साइबर डिफेंस नेटवर्क नूं मजबूत करके साइबर अपराध खिलाफ़ कीतियां जा रहियां कार्रवाईयां बारे जानकारी दिंदिआं उन्हां दस्सिआ कि करीब 1 साल विच पंजाब पुलिस ते राज साइबर क्राइम डिवीजन ने 29 साइबर अपराध पुलिस थाणिआं विच 956 FIR दर्ज कीतियां अते वख-वख साइबर धोखाधड़ी मामलों में 729 मुलजमान गिरफ्तार किया है। उन्हें यह भी जानकारी दी कि सख्ती नाल लागू करन दे नाल नाल पंजाब पुलिस ने रोकथाम उत्ते भी ध्यान केंद्रित किया है अते सूबे भर विच करीब 657 नागरिक जागरूकता प्रोग्राम चलाए ने तां जो लोकां नूं ऑनलाइन धोखाधड़ी अते घोटालियां बारे जागरूक किया जा सके। नागरिकां नूं अजिहियां घटनावां बारे तुरंत 1930 उत्ते फोन करके सूचित करन लई कहा गया है। नंबर एक बार फिर सुन लो 1930। उन्हें कहा कि पंजाब पुलिस साइबर अपराध तो जनता की राखी अते लोक जागरूकता प्रति अपनी वचनबद्धता जारी रखेगी। पंजाब दे समाजिक सुरक्षा ते स्त्री ते बाल भलाई मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने अज अपने विधानसभा हलका मलोट दे पिंड चंडावाला ते पिंड मलोट विच लोक मिलनी प्रोग्राम तहत लोकां दीआं समस्यावां सुणियां ते मौके ते निपटारा कीता। पिंड जंडावाला विखे लोगों दी मुश्किलां सुनदिया उन्होंने दस्सिया कि इस पिंड दे विकास लई सरकार वल्लों करीब 6 करोड़ रुपए खर्च करके विकास के काम करवाए गए ने अते 21 किलोमीटर लंबे 3 रजवाहियां ते खालियां नूं पक्का करवाया गया तां जो सिंचाई अते लोगों नूं पूरा पानी मिल सके अते सरकार वल्लों विकास के काम चंगी पद्धर ते करवाए जा रहे ने तां जो उन्हां नूं सरकारी स्कीमां दा लाभ मिल सके। इस मौके उन्हें यह भी दस्सिया कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई लई लगातार नवे उपराले कर रही है अते मावां तीआं सत्कार योजना तहत औरतां नूं आर्थिक तौर ते मजबूत किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने शुद्ध दुध तंदुरुस्त पंजाब मुहिम तहत दुध विच मिलावटखोरी नाल नजिठण अते दुध की गुणवत्ता बारे जागरूकता पैदा करन लई एक समर्पित टोल फ्री हैल्पलाइन 1800-1800-2202 कायम कीती है अते एक नोडल अफसर तैनात कीता है। नंबर एक बार फिर सुन लो 1800-1800-2202। इस मुहिम संबंधी जानकारी साझी करदिआं पंजाब दे पशु पालन डेयरी विकास ते मच्छी पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने दस्सिया कि डेयरी विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2026 तो हुण तक 160 कैंपां विच दुध दे

0: नहीं है फिर आई ना तो जोर से बताए नु दसी चल
1: तैनू पता ही है भाई, जदों तीमी ने सन लाना होवे तां बिंद च बंदे नू भुलोल।

0: 성기야 왜? 어꼬찌?
1: 아이 기네 성기야 저따야 매 매다 드리스 데그다티 पर जर ताया जोनसों लगदा ता है नी है जा है भी ता भी जकीन जाने ओदा मेरे पुत दा ओदा जर स्याना ब्याना दुनिया मानती है गोडी हाथ लाउंदे लोग सुदे तीमियां कुड़ियां पैरी पैंदी है ऐ किवें हो सकदा है
0: ऊ ता सिरा हरेक दुकानदारी औखी आ चलाउनी पर आ कूड दी हट्टी तो बहुत ही औखी है। इस पक्षों सच्चा सुच्चा साफ सुथरा स्याणा ब्याणा दिखना पैंदा है, फिर ही तेरे अर्गां दा गड्डा डइए हुंदा है। जे बंदा देखण च बीबा ते भला मानस ना लगे तो ओदी सच्ची ते यकीन कोई नहीं करदा, झूठी ते तां करना किने है।
1: फिर बई ताया आई नी ताई नाथो दी भुआ दी कुड़ी दीपा
0: दो बार आई थी ताही ता चरना थोड़ा जा तिलक गया थी।
1: फिर ता तू भी देखी होनी है।
0: क्यों ताही क्यों पूछा होए?
1: ओ कुछ नहीं, मैं सोचिया मैनू भी दर्शन पवा दिंदा है मेरे अंदरले टीवी ते
0: ओ तेरे मासियां दी थां लगी, तेरी मां तन्नो ने टाइम बाला टपाता तेनू दुनिया दिखाउण च, हुण ता ओ पोतियां दोतियां वाली हुंदी।
1: चल लंघ गया बेड़ा तो पछताना की है मेरे पुत दा। अच्छा फिर बई ताया की बीती उदू गह आया चरना हथ के निकल गया।
0: चरना हथ भी आ जांदा किले खुरली ते भी खड़ जांदा, पर जौने ने जिहड़ी अपनी दुकानदारी दा सेवादार बनाउण वाली दा पवाई उहने इहनां दे गंढे गाड़ते।
1: अच्छा
0: नाथो जिन्नी सोहणी सी ਉਦੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀ ਵੀ ਤੀ, ਕੀਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉੱਚੇ ਨੂੰ।

0: का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति दे।
1: फिर उन्होंने बलोत्रा जिले के पचपदरा विखे देश का सब तो आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पैट्रोकैमिकल प्लांट समर्पित किया। उन्होंने रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। श्री मोदी ने इंजीनियर तकनीकी माहरों नाल गलबात भी की। प्रधानमंत्री ने जयपुर मैट्रो फेज 2 का भी वर्चुअल नींह पत्थर रखा। एक अठवें संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि पछमी एशिया में टकराव ने 21वीं सदी के सब तो वड्डे ऊर्जा संकट को जन्म दिता है। उन्होंने कहा कि भारत के समय सिर फैसलों, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय स्रोतों के सूझवान प्रबंधन ने देश को इस संकट को दूर करने के योग बनाया। उन्होंने कहा कि जदों के बहुत सारे देश ईंधन की कमी नाल जूझ रहे सन, भारत ने संकट का सही मुलांकन किया और एक प्रभावशाली रणनीति बनाई।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: तो सुन रहे हो साडा एक्सेंडर @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। संसद का मानसून समागम इस महीने की 20 तरीक नूं शुरू होएगा तो 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई तो संसद का मानसून समागम बुलाने की सरकार की तजवीज़ मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि समागम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से अर्थपूर्ण बहस, चर्चा के फैसले लैण से केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की रक्षा बरामद 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पद्धर से पहुंच गई है। नवी दिल्ली में एक निजी समागम में बोलद श्री सिंह ने कहा कि रक्षा बरामद वित्तीय साल 2013-14 में 686 करोड़ तो मौजूदा पद्धर तक लगभग 57 गुणा वधिया। उन्होंने कहा कि यह वाधा रक्षा निर्माण और तकनोलॉजी में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म में वध रहे आलमी विश्वास को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सालाना रक्षा उत्पादन भी वित्तीय साल 2025-26 सब तो उच्चे पद्धर से पहुंचने का अनुमान है, जो कि 1,78,000 करोड़ तो वध है, जो 2014-15 नालों लगभग 3 गुणा ज्यादा है। उद्योग जगत के माहरों ने कहा कि पेट्रोल च एथानोल मिश्रण प्रोग्राम रातों रात लागू नहीं किया गया, सगों इस चंगी तरह योजनाबद्ध पड़ावार से विज्ञानक तौर पर संचालित प्रक्रिया राही लागू किया गया है। नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करद इंजीनियरस इंडिया लिमिटेड के सबका प्रधान से मैनेजिंग डायरैक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथानोल मिश्रण प्रोग्राम 2018 ढांचागत चर्चा और हिस्सेदार सलाह मशवरे लिए जनता में रखा गया। उन्हां अगे कहा कि इस पहलकदमी विज्ञानक सबूतां वाहन निर्मातावां भारतीय आटोमैटिव खोज एसोसीएशन सोसायटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स वालों कीतियां गईयां व्यापक परखां मगरों लिया गया है। इस मौके पर बोलदिया टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कंट्री हैड और कार्यकारी उप प्रधान विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथानोल एक साफ सुथरा ईंधन है जो चंगी संचालन कुशलता से तेज़ गति प्रदान करता है। उन्हां अगे कहा कि यह अजे युग में जदों लोग जलवायु तब्दीली दी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह पौद्यों तो प्राप्त एक 0 कार्बन ईंधन है। दिल्ली की एक अदालत ने अज दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम दी जमानत अर्जियां खारिज कर दित्तियां ने। कड़कड़डूमा अदालत के वधीक सैशन जज समीर बाजपेई ने दोवां मुलजमान दी जमानत अर्जियां खारिज कर दित्तियां। मुलजमान ने इस आधार पर जमानत की मांग की सी कि बिना मुकदमे के उन्होंने लगातार हिरासत में रखना उन्होंने निजी आजादी के मौलिक अधिकार की उलंघना है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच आज मैनचेस्टर में खेडिया जा रहा है। भारत ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत लिए वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 99 दिन की सब तो घट उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैच खेडने का रिकॉर्ड बनाया है। ताज़ा खबरां मिलन समय तक भारत ने

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका आरजे चेतन। आज हम थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुप्रतिभा सिद्धांत क्या है? आपके सीखने की शैली। बहुप्रतिभा सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती है। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रतिभाएं सूत्र रूप में रखी। उनकी सूची अस्थायी थी। पहली 2 को स्कूल में विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। अगली 3 सामान्यतः कला से जोड़ी जाती है एवं अंतिम 2 वे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तिगत प्रतिभा कहा।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: बहुप्रतिभा के प्रकार, दृश्य संबंधी स्थानिक प्रतिभा, दृश्य को समझने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोग चित्र के रूप में सोचते हैं एवं जानकारी को रखने के लिए इन्हें स्पष्ट मानसिक प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें नक्शों, चार्ट, चित्रों, वीडियो तथा फिल्म देखने में आनंद आता है। उनके कौशल में शामिल है पहेलियां बनाना, पढ़ना लिखना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, दृष्टि संबंधी रूप कलाकार, स्कल्प्टर या पेंटर बनना, प्रतिबिंबों में हेर फेर, निर्माण दृढ़ करना, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों व्याख्या करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां नाविक, शिल्पकार, दृष्टि कलाकार यानी चित्रकार, अन्वेषक, आर्किटेक्ट, आंतरिक डिजाइनर्स, मैकेनिक, इंजीनियर।

यस शाब्दिक। नेक्स्ट ऑन अ लिस्ट दोस्तों वी हैव शाब्दिक यानी बहुभाषा प्रतिभा, शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले लोगों में अंकेक्षण कौशल अत्यंत विकसित होता है तथा सामान्यतः ये शिष्ट वक्ता होते हैं। ये चित्रों के बजाय शब्दों में सोचते हैं। उनके कौशल में शामिल है सुनना, बोलना, लिखना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना, भाषा के उपयोग का विश्लेषण। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव रुचियां हैं दोस्तों, कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ, अनुवादक। मूविंग अहेड वी हैव तार्किक गणितीय प्रतिभा यानी वजह, तर्क एवं संख्याओं के उपयोग की क्षमता। ऐसे सीखने वाले तार्किक एवं संख्यागत तरीके से संकल्पना कर विभिन्न जानकारियों के बीच संबंध बैठाना है। अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा जिज्ञासु। ऐसे सीखने वाले कई प्रश्न पूछते हैं एवं प्रयोग करना पसंद करते हैं। उनके कौशल में शामिल है समस्याएं हल करना, जानकारी को वर्गों एवं श्रेणी में बांटना, परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए गुण सिद्धांत के स्थित कार्य करना, कारणों की लंबी कड़ी को लेकर अनुक्रम बनाना, नियंत्रित प्रयोग करना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में प्रश्न एवं विस्मय करना, जटिल गणितीय गणनाएं करना, ज्यामितीय आकारों के साथ कार्य करना। ऐसे लोगों के करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखापाल, गणितज्ञ।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव दैहिक यानी इंद्रियगत प्रतिभा, शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षता पूर्वक पकड़ने की क्षमता। ऐसे सीखने वाले अपने आप को हलचल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन्हें संतुलन एवं हाथ से आंख के समन्वय का अच्छा बोध होता है। उदाहरण के लिए गेंद खेलना, बैलेंसिंग बीम्स, अपने आसपास की जगह के संपर्क में ये जानकारी को याद एवं प्रसंस्कृत करने में सक्षम होते हैं। उनके कौशल में शामिल है नृत्य, शारीरिक समन्वय, खेल कूद, स्वयं द्वारा प्रयोग, शारीरिक भाषा का उपयोग, कला, अभिनय, हाथों का उपयोग कर रचना, शरीर के माध्यम से मन के भावों को व्यक्त करना। करियर के लिए संभव मार्ग है दोस्तों, एथलीट, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, नर्तक, अभिनेता, कारीगर। मूविंग अहेड वी हैव संगीतज्ञ तालग्रही प्रतिभा, संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता। संगीत में रुचि रखने वाले ऐसे विद्यार्थी ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। वे संगीत में जो भी सुनते हैं उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना। इनमें से कई विद्यार्थी पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए झिंगूर, घंटिया, नल से टपकता पानी। इनके कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। करियर के लिए संभव मार्ग है वादक, डिस्क जॉकी, गायक, संगीतकार। अंतर्व्यक्तित्व प्रतिभा, अन्य को समझना एवं संबंध स्थापित करने की प्रतिभा। ये विद्यार्थी बातों को अन्य लोगों के नजरिए से देखते हैं, ये समझने के लिए कि वे क्या सोच रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं। इनमें अक्सर भावनाओं, इरादों एवं उत्प्रेरणा को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। वे बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं, हालांकि कभी कभी वे गड़बड़ का सहारा भी लेते हैं। आमतौर पर वे समूह में शांत बनाए रखने की चेष्टा करते हैं एवं सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। वे अन्य से संवाद आरंभ करने

के लिए वाक् जैसे कि बोलना एवं अवाक् जैसे कि नज़र मिलाना शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनके कौशल में शामिल है दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना, दोहरे परिप्रेक्ष्य, समानुभूति का उपयोग करते हुए अन्य लोगों के मूड और भावनाओं को समझना, समूह के साथ सहयोग, लोगों की मनोदशा, प्रोत्साहित एवं इरादों पर ध्यान देना, मौखिक रूप से और गैर संचार मौखिक रूप से संवाद करना, विश्वास का निर्माण, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना। करियर के लिए संभव मार्ग है परामर्शदाता यानी काउंसलर, विक्रेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी। तो दोस्तों, ये थी थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अपना पर्सनल डाटा देने तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 8:45 ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक

0: आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का

0: तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ। आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने

बिग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से

0: अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है।
4: टुडे इंडियाज थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इज बीइंग लॉन्च्ड। द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द फर्स्ट प्लांट ऑन 28th फरवरी, द सेकंड प्लांट ऑन 31st मार्च एंड टुडे ऑन 4th जुलाई द थर्ड प्लांट। गिवन द स्पीड विद विच द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड 12 प्लांट्स इन द कैबिनेट एंड विद कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग इन 3 आउट ऑफ दोज 12 प्लांट्स, अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडियाज सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकराकर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुं वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना

0: घटना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत

0: भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहाँ आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक

0: मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
1: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशरफी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
0: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है

0: क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं भी जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
1: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम

0: ने किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने ही कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उससे मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मुंह इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गून जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलि

0: वेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना, कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को रंग बनता है, वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे, जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहाँ पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्मत्त यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हो, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़े ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Bushirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malabika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा।
1: टुनाइट पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय इज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल शाहा।
0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, द कंपोजिशन ऑफ विच इज सेट टू मध्य लय तीन ताल फॉलोड बाय द्रुत एक ताल।

ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर।

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: काल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था

0: देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over

0: क्या बात है जी, क्या बात है। इस गीत दे विच इन्नी जान सी ते मैनू तां इत्थे ही बैठे बैठे इदां लगन लग पिया भी शायद मीह दुबारा पैन लग पिया करे, स्टूडियो 'च ही पै गया। सिंगर दे विच क्वालिटी हुंदी है जी, और गीतकार दे विच भी जदों शब्द ते संगीत दोनों का तालमेल बनिया होवे ते नाल दी नाल रूह तों गाउण वाला सिंगर होवे ते फिर तां क्या बात है। कह रहा हो असी गल करदे हां अपने अगले कॉलर दोस्त दे नाल। हैलो
1: हेलो कमल शर्मा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने? शर्मा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है तुहाडा। होर फिर तुहाडे फाजिलका वाले पासे किदां? हां जी, बारिश दा की हाल है?
1: ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨੀ ਸਰ ਜੀ,
0: ਅੱਜ ਹੋਈ ਨੀ,
1: ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ,
0: ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ,
1: ਬੱਦਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ।
0: ਚਲੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ, ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾਣਾ।
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈਏ?
1: ਗੀਤ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸੁਣਾਵੇ
0: ਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ, ਅਤਾ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।

0: हेलो,
1: हाँ जी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी।
1: जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने? केड़ी जगह तो बोल रहे ने? आहा,
1: मैं बंसीलाल पिंड तेजा मोड़ी जिला अंबाला जी।
0: क्या बात है बंसी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। और ठीक ठाक हो बंसी लाल जी?
1: ठीक ठाक है जी। फोन बहुत टाइम लावा जी।
0: हाँ जी, वो इदा ही है जी। देखो, तुहाड़े वर्गे स्रोते साढ़े नाल जिहड़े आ जुड़दे ने,
1: अच्छा
0: ते फिर कईयां दी कॉल्स इन्नियां ज़्यादा हुंदियां, लाइन बिजी हो जांदी है, इस करके नहीं
1: बहुत
0: मिलदी।
1: तक बहुत
0: हाँ, ते
1: बाजू
0: दसो।
1: आते तारे तोड़ने वाला
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। ते की उहनूं कहिंदे, इंतजार च ही तां मज़ा सारा, ठीक है ना? ते की उहनूं कहिंदे ने, बारिश दा दसो तुसीं, की हाल है तुहाड़े आले पासे?
1: साढ़े नहीं है जी। बारिश घट गई
0: अच्छा,
1: बहुत।
0: चलो आ जाएगी जी। दसो कहड़ा गीत सुनाइए फिर।
1: गीत तो सारे ओ गलेरी जा गलेरी जा
0: हाँ जी, डोली गलेरिया होना था।
1: डोली
0: लो जी
1: गलेरी
0: फिर,
1: जा
0: लो, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो,
1: नमस्कार शर्मा जी। महेशगढ़
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? तो केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: मंडी हरजीराम मलोड़ तो। धन्यवाद
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है। और फिर तुहाडे आले पासे बारिश का की हाल चाल है जी?
1: जी, बारिश का है तो कोई ना निशान नहीं जी।
0: तो मतलब गर्मी एंजॉय कर रहे हो फिर पूरी?
1: एंजॉय कर रहे जी, ओके हो जाने।
0: हाँ चलो जी, इदा ही औखे हो गए फिर सौख होना।
1: कोई मीह च भिज लैंदा, कोई मुड़के नाल भिज लैंदा
0: हाँ
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। ते दसो केड़ा गीत सुनाइए।
1: बब्बू मान दा सुना लो जी, सच बोलो।
0: क्या बात है, नजर ना लग जाए। लो जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो कमलता जी, नमस्कार जी। कमलता
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने? अच्छा
1: जी, तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती।
0: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है अपने।
1: थैंक
0: होर ठीक ठाक हो जी?
1: यू।
0: क्या बात। हाँ जी, दसो केड़ा आज गीत सुनाइए तानू फिर।
1: ਅੱਜ ਸੁਣਾਵੇ ਨਸ਼ਕਾਰਾ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਮਝ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਗੋਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: क्या
1: ਕਰਦਾ
0: बात है
1: ਜੋ
0: जी।
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लो जी फिर एंजॉय करो ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। चकला
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं तो कहड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: बाजार समाणा शहर जिला पटियाला पंजाब तो पप्पू राजा खुश दिल जी।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे टोल ढाके दे नाल स्वागत।
1: असी तो
0: हेलो
1: असी तुहाडा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं जी। तुहाडा प्रोग्राम पेश करने का बहुत वधिया अंदाज है जी।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
1: असीं तां 1975 तो प्रोग्राम सुन रहे जी आकाशवाणी जलंधर दे सवेरे 5:53 तो लेके रात दे 1 बजे तक जी।
0: क्या बात है, क्या बात है। ते अपने बारिश दे बारे भी दस दो, किदां फिर मौसम तुहाडे आले पासे?
1: बारिश मौसम ठंडा हो गया जी, 2 घंटे मीह पिया जी।
0: आहा, क्या बात है, क्या बात है। ते चलो वधिया जी, तुहाडा नाम भी खुश दिल है ते खुश दिल माहौल ही हो गया फिर,
1: हाँ जी हाँ जी। दो
0: ठीक है ना?
1: 200 चिट्ठियां हर रोज बिना नांगे आकाशवाणी जलंधर ते सारे दुनिया के स्टेशनों से पाने जी।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक बहुत बड़ी ताड़ी जिहड़ी है, कह सकदे जनून आ मोहब्बत आ आकाशवाणी दे नाल। दसो
1: हाँ जी,
0: कहड़ा गीत
1: मोहब्बत
0: सुनाइए।
1: याद रहे जी सारी
0: हाँ
1: उम्र जी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दसो कहड़ा गीत सुनाइए। हाँ
1: साढ़े परिवार के कुछ नाम हो रहे हैं जी। साढ़े
0: जी, हाँ जी,
1: पापा जी हैं सेठ परशोत्तम दास खुशदिल जी चकला बाजार समाणा तो,
0: हाँ जी,
1: शंकर शंभू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, पप्पू अनमोल खुशदिल, साडी बहुत सुंदर पत्नी है संगीता रानी जिंदल चकला बाजार समाणा जिला पटियाला पंजाब तो जी।
0: धन्यवाद जी। ते दसो कहड़ा गीत सुनाइए।
1: नरेंद्र बीबा की आवाज है जी। गाना तेरिया मोहब्बत ने मार सुटिया, गाना पूरा सुनाई जो तुहाडा आकाशवाणी जलंधर ते गुलाब
0: गाना
1: दे फुलां
0: असी
1: नाल पूरा स्वागत करते हैं।
0: सारे ही पूरे सुनाई दिया, कोई गाना आदि छड़ी दे नहीं। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार शर्मा जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो?
1: भूषण कटारिया मलोड़ तो बोलदा जी।
0: क्या बात है जी, तो बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है फिर। बाकी असीं ढोल ढमक्के दे नाल बारिश दी भी स्वागत करते हैं, भी मलोट आलियां दे उत्ते मेहर करे, बारिश छम छम पवे।
1: ऐसे गर्मी बहुत है, मलोड़ च बहुत गर्मी है।
0: ताई मैं कह रहे हैं ना जी, वैसे बारिश का स्वागत भी कर देने, एडवांस च स्वागत कर देने भी आ जाए।
1: हाँ जी हाँ जी मेहरबानी जी।
0: ते जदों तक बारिश नहीं आंदी फिर गीतां दे जरिए मीह तो पवाइए। दसो केड़ा गीत सुनाइए।
1: जैस्मीन अख्तर ते सब्बा जी दा सुना दिओ करके फलाई।
0: आहा क्या बात है, लो जी धन्नवाद जी कॉल करने के लिए।
1: मेहरबानी जी।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने? मनजीत
1: मनदीप कौर बोल रही है जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है। और दसो जी, फिर केड़ा गीत सुनाइए।
1: गीत सुना दो, चलो अपनी मर्जी दे सुना दो। वधिया
0: ठीक
1: गया,
0: है जी, धन्यवाद जी। कॉल
1: ढोल
0: करने,
1: वधिया बजे तो
0: धन्यवाद
1: जी।
0: जी,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी।

0: पूछना ही भूल गया कि मम्मी कितने गए ने।
1: की करोगे पूछ के, एवं होर दुखी होवोगे।
0: क्यों सुख तो है, मैं क्यों दुखी होवांगा?
1: ये सुन के कि मम्मी अपने गुआंढण दी नूं निंदी नाल गए ने।
0: तो ये दे विच मेरे दुखी होने वाली कड़ी गल है, वो अक्सर जाते ने।
1: पर इस वार खास गल ये है कि निंदी ने टेस्ट करवाया सी ते तीजी वार भी लड़की है।
0: पर प्रकाश नूं इस गल लई राजी कर लिया सी?
1: प्रकाश तां टूर ते गया होया, इसलिए उसकी गैर हाजिर विच मम्मी नूं लैके गई है निंदी।
0: इसका मतलब ये होया कि एक होर हत्या जिस विच मम्मी भी भागीदार होंगे। किन्ना चिर चलेगा ये सब कुछ, किन्ना चिर अजिहियां हत्यावां लई जिम्मेवार मुजरम साफ बचते रहेंगे, किन्ना चिर होर चिट्टे दिन हुंदियां मासूमां दियां हत्यावां दे जशन मनाए जाणगे। हो रब इन्हां जालमां नूं माफ नहीं करेगा, कदे माफ नहीं करेगा।
1: सारी दुनिया की चिंता तुसी एक अपने सिर ला ली है। तुसी बैठो, मैं चाह लेके आनी हाँ।

0: ले आवांगे बेटे, जरूर ले आवांगे। बढ़िया गल्ला मारा लग पी है मेरी बेटी, हाँ बहुत शैतान हो गई है मेरी लाडली बच्ची, चोनी बच्ची।
1: अब बढ़िया लाडियां पाडियां हो रही ने मां धी विच, अज ते कोई खास ही गल लगदी है।
0: जी हाँ, हुने थोड़ी बेटी ने बड़ी खास गल कीती है।
1: अच्छा, ओए ओए ओए ओ मेरी प्याली बिटिया छोनू, ए तू अपनी मम्मी नू केड़ी खास गल आखी है?
2: पहला टॉफी दियो फिर दसांगी।
1: अच्छा ए लो टॉफी, ते हुन दच्छो
2: मेरा एक वी ले आओ ना डैडी।
1: हाँ, जरूर जरूर लेके आवांगे मेरा प्यारा बेटा, हुन तू जाओ जाके खेलो।
2: अच्छा डैडी।
0: बहुत शैतान हो गई है।
1: तू सिखाया हुन इसनु, पूरा प्लान प्रोग्राम लगता है।
0: मैं सिखाया? थानू तो उंज शक करन दी आदत है, मैं उसनु कुछ नहीं सिखाया। बाहर गली च बच्चे नाल खेड रही सी, किते डेजी ने आख्या होएगा कि सोनू दा कोई वीर नहीं, बस यही गल याद रखी उसने।
1: अच्छा बाबा, गलती माफ, मैं समझिया किते मेरे ऊपर कोई मनोविज्ञानिक प्रभाव पाया जा रहा है। मम्मी अजे तक नहीं आए?
0: नहीं, आते गए ने, पूजा पाठ खत्म करके हुने आने वाले होने ऊपर।
1: पूजा पाठ?
3: क्यों बेटा, पूजा पाठ करना कोई बुरी गल है?
1: नहीं मम्मी, मैं ये तो नहीं आख्या।
3: आए तो फिर हसिया क्यों है?
1: बस एवं कुछ सोच के कि पहला बंदा पाप करता रहता है, फिर पाप नू पुंच बदलन ले पूजा पाठ दा सहारा लेंदा
3: है। मैं की पाप कीता पुत?
1: अपने आप तो पूछो मम्मी कि तुसी अज केड़ा पुन धर्म दा काम करके आयो।
3: ले दस ना, जदों कोई गुआंढ मथ्यों बुलाण आ जावे तो जाना ही पैंदा पुत, फिर उस विचारी दे तां दो कुड़ियां पहला ही ने।
1: हाँ, निंदी नूं तां तुसी तरस नाल बिचारी आखदे हो, उस कली नूं तुसी की कहोगे जिस नूं तुसी खिड़न तों पहला ही मरोड़ सुट्टिया है? तरस सिर्फ निंदी ते ही क्यों कीता जा रहा है, उस मासूम ते क्यों नहीं?
3: ए तां किसे दे हाथ वस नहीं सुरिंदर, पुत वक्त दी हवा ही अजेही चल रही है, नाले असी केड़ा कल्ले सी उत्थे, होर बथेरे सी उत्थे।
1: यही ते दुख वाली गल मम्मी कि असी दूजियां दी देखा देखी गलत काम करदे हां, जबकि साडा फर्ज ये बनता कि असी गलत काम करन वालियां नू समझाइए, पर असी ते आप भी उन्हां नाल भीड़ च शामिल हो जांदे हां।
3: वे तू ते बस बिना रुके बोलन लग जाना सुरिंदर, कल्ला तो कल्ला बंदा की कर सकदा ते की समझा सकदा किसे नू? अपनी डेढ़ पा खिचड़ी अड पावे जिन्नी मर्जी रिन्नी जाओ, कोई नहीं पुछदा।
1: पर मम्मी, बंदा अपने आंढ गुआंढ आले दुआले नेड़े तेड़े तां दो चार बंदियां नू समझा ही सकदा है, ओ अगे दो चार नू समझाउण
3: ना। फिर तू प्रकाश नू क्यों नहीं समझाया, ओ तेरा भी ते गुआंढी है।
1: मैनू ते किसे गल दा पता ही नहीं सी, जे पता हुंदा तां मैं ए अनर्थ नहीं सी होण देना।
0: ओफो, तुसी मम्मी नाल क्यों बहस कर रहे हो? प्रकाश आ जाएगा तो तुसी ओदे नाल गल कर लेना, मम्मी नू तां निंदी ने बुलाया ते मम्मी चले गए, बस
1: हुण गल करन दा की फायदा होना निर्मल, जो होना सी हो गया, आखरे जुल्म कदों तक हुंदा रहेगा।

0: तो फिर निर्मल, मम्मी ये जिद कर रहे ने।
1: हाँ, वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं, बस टेस्ट करवाने लिए कह रहे ने। ते लड़की होने की हालत च अबोर्शन भी करवाना पड़ेगा।
0: बस बस कर निर्मल, मैं हरगिज नहीं होन देंगा।
1: पर मम्मी यो ही चाहते ने।
0: इसका मतलब है कि मैनू बगावत करनी पवेगी।
1: पर मम्मी की गल मनन विच नुकसान भी की है।
0: नहीं निर्मल, मैं अपने असूल नहीं छड़ांगा, भावें दुनिया इधर दी।

0: की गल निर्मल, अज किवें पई है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सवेरे तो मैं तेरे चंगी भली छड़ के गया सी। मम्मी कितने ने?
1: मम्मी तो गुआंढियां दे गए ने।
0: पर तैनू की होया?
1: कुछ खास नहीं, एवं सिर चकरा रहा सी ते मैं आराम करन ले लेट गई।
0: तैनू एकदम चक्कर आने किवें शुरू हो गए? चल किसे डॉक्टर तो दवाई ले आने।
1: नहीं, ओ कहिंदे ने ना कि एक झूठ नूं लुकाउण लई होर बहुत झूठ बोलने पैंदे ने, पर मैं अजिहा नहीं कर सकती। इसलिए चाहुंदी हां कि तुहानूं सच दस दिआं।
0: सच? की मतलब है? आखिर मामला की है?
1: मैं अबॉर्शन करवा लिया।
0: उफ निर्बल, ए तू की कीता है? तू मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती कीती है निर्मल, बहुत बड़ी ज्यादती कीती है। अपने मासूम दी तू आप ही वैरन बन गई है कमलिए। मावां दे दिल पत्थर क्यों हो गए ने? ममता ममता इन्हां पत्थरां थले दब गई है। पापी तू है निर्मल, ते सजा सजा उस मासूम नूं मिली है। एक किधर दा इंसाफ है? औरत जात नूं ही तबाह करन ते तुली होई है। ओए मेरे रब्बा मैनू माफ कर दे। बड़ा गुनाहगार तो मैं हाँ, मैं काश ये सब कुछ सुनन तो पहला मैं जमीन चरख हो जाता। मैं ते तेरा कुछ भी नहीं सी बिगाड़िया निर्मल। तू मैं तो किस गल का बदला लिया? तू निर्मल, तू एक कुकर्म कीता, तू मेरे नाल धोखा कीता। मैं तेनू कदे माफ नहीं करांगा निर्मल, ते तू सारी उम्र रोंदी रहेगी, सारी उम्र रोंदी रहेगी निर्मल, तू सारी उम्र रोंदी।

0: सोनू ते पापा, मैं जानती हाँ कि मैं थोड़े विश्वास नूं तोड़िया। इस सदमे ने थोड़ा चैन, थोड़ी रातियां नींदा खो लिया ने। मैथों थोड़ी हालत वेखी नहीं जाती। सारा दिन गुमसुम पे ते रातां नूं जागदिया आखिर तुसीं सोचते की रहिंदे हो?
1: सोचता रहना कि इस पाप का प्रायश्चित किवें कीता जावे।
0: प्रायश्चित तुसी करोगे, पर पाप तो मैं कीता है।
1: कि तू ये समझती है कि तू पाप कीता?
0: हाँ, थोड़े वल वेख के हुणे एहसास हो रहा है मैनू।
1: ते प्रायश्चित
0: वो भी कर लवांगी
1: किवें,
0: जिवें भी तुसी आखोगे।
1: की पहला सब कुछ मेरे कहने अनुसार होया?
0: नहीं होया, इसलिए तो माफी चाहनी हाँ।
1: तैनू मैं उस दिन कह दिता सी कि मैं तैनू कदे माफ नहीं करूंगा।
0: ताकि शराब दोगे?
1: मैं कौन हूं जो शराब दे सका? मैं तो अपने आप नूं वड्डा गुनाहगार समझदा होया प्रायश्चित ही करांगा।
0: पर किवें?
1: यही तो इन्ने दिनों से सोच रहे हैं।
0: देखो, कोई कोई अजिहा कम ना कर बैठना के।
1: तेरा मतलब आत्महत्या? नहीं निर्मल, मैं इन्ना बुजदिल नहीं।
0: अच्छा छोड़ो, सोने की कोशिश करो, रात भी बहुत बीत चुकी है।
1: तू सो जा।
0: ते तुसी?
1: मैनू अजे नींद नहीं आ रही।

0: खीगल, बड़ी जल्दी आ गए दफ्तर तुम। तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है, आज जरा जल्दी छुट्टी कर ली सी।

इश्क पीर फकीर का मरतबा है जो किसी विरले रब के प्यारे नसीब होता है। यह अग की लाट चूमन वाली गल है, सपाशिया की दोस्ती है, जूंदे मरण वाली गल है। तो वह खारे तत्ता दरिया दल शिव की रग रग भी होकर लंघदिया ने। जो इश्क सौखे नसीब हो जाए तो उन्हें अनुभवी स्थाई नहीं होंदा, जिन्ना के कच्छियां ते रुड़ के नाजक मलूक पैरां दी सने मेहंदी थलां विच सड़ के जहर प्याले पी के उठियां खलां लुआ के रूह सरशार करता है।

रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। ए कथन बाबा फरीद जी दा है। आप जी फरमाउंदे ने कि जिहड़ियां रूहां उस परमात्मा दे रंग विच रतियां हुंदियां ने, उन्हां नूं हमेशा प्रभु दे दीदार दी तलब रहिंदी है। पर अफसोस कि असीं पुल्लड जीव हमेशा लोभ दे रंग विच ही रत्ते रहिंदे हां। साडे तन ते पां ही ऐसी चढ़ी हुई है कि साडे मन ते कोई होर रंगत चढ़दी ही नहीं। पर जिन्हां जीव रूपी स्त्रियां नूं उस सच्चे उस हरी दे रंग दी रंगत दी लोड़ पासदी है, वह गुरमुख जना दी संगत करदियां हन, सतपुरशां दी संगत करदियां हन। उन्हां दी संगत विच जाके उन्हां गुरमुख जना तों कुर्बान हो जांदियां ने, जिहड़े प्रभु दे नाम रंग विच उसदे प्रेम रंग विच रत्ते हुंदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी तिलंग राग विच फरमाउंदे ने, हाउं कुर्बान है जाओ मेहरवाना, हाउं कुर्बान है जाओ, हाउं कुर्बान है जाओ तिना कै लैन जो तेरा नाओ। सरवण करदे हां भाई प्यारा सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ ये शब्द है।

जा कहो हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस ताके, जाका सतगुर पूरा। इस शब्द गायन कीता सी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

अमर सतगुर थिर किया, अमरदास अमृत छतर गुर राम दिया, गुर रामदास दर्शन।

अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद ते मत चूके रे मन, भेद बप

0: पूर्ण निवास निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़े थे, कबू मिटे नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जगतारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: कल समुद्र पे रूप प्रगट, हर नाम ही उदाहरण। बसे संत जिस हृदय, दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार, तास बिन अवर न कोई। मन बच जिन जानियो, पयो तह समसर सो।

0: अजय कंग जल टल सिख संकट सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमरपुर गुर रामदास हर पै गयो हरिवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे सिर गुरमोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप।

0: हर सिंघासन दियो श्री गुर तैं बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गेते पाग पापतन पीतर कंपै। काटे सो पापतन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो। काटे सो पापतन नरों के गुरु राम दा जिन पायो। शतर सिंघासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जू समाने। आन पौ नेजा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो राज जो गुरु रामदास तुम हो रस जाने। जनक सोए जिन जानिया उन मर रस धरिया। सत संतोख समाचरे आपरा सर भरिया। अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे। एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
2: अब राखो दास भाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाखस फाड़े कर आज द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत बस्तर दीन बो साज सो दामा अपदा ते राख्या। गनका परत पुरे तहकाज श्री सतगुर सो पर सन कलजुग होए। राखो दास पाठ की लाज।
3: प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना। मिले दान संत रेन जिह लग भौजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे। दिहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावे। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उधरी इक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जान नानक गोर पार ब्रह्म।
4: सतगुर नाम एक लिव मन जपे धड़ो। तिन जन दुख पाप कहो कत हो वह जियो। तारण तरण खेण मातर जाको दृष्ट तारे। शब्द रद विचार काम क्रोध खो वह जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता। एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो। जाको देख सदृद्र जावे नाम सो निदान पावे। गुरमुख ज्ञान दुरमत मेले तोवे जियो। सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़। तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।

निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिने आगर, गहर गंभीर अथाह अत बड, सो पर सदा सब विदरत नागर।

0: आस राखो सरनाई।
1: सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसामदी दूर अरसों कुरसों चटिया, तद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदशाह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सा। सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदशाह, जिस पास बैठिया सोहिया।

अपने सतगुर को सदबल जाई, गुर कृपा ते हर मन वसाई, से धनवंत हर नाम लिव लाए, गुरपुरै हर धन परगासिया, हर कृपा ते वसै मन आए, रहा अवगुण का।

कट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिलै मन मानिया सहजे जिन प्रभ जान

आई सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई ते गवाही देख के अन डिठ कीता

वेत गाया पे वतै वट धागे अवरा कतै लै पहाड़ करे विया हो कड़का गल दसे राह हो सुन वेखो लोकां विडान अंदा ना हो।